0: मेरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923280 0300-585-8481।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ। खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345923280।
0: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से

0: करता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सन ब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीजे के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके रस।
1: 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ। खाने के फवायद: जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतरी में मुफीद है। मालिश के फवायद: सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल: सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 03459239।

यार हुसैन के मिलावेगी सर वजीर खान सरा गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड बेबी साइकिल छोटा लाहौर शाख यार हुसैन

0: अकबर टी यानी अक हर तरफ ता दाना रीदी चिक्रिमान क्रिमान औ क्रिमान वे तासो हम हैरान ये जो उस कम क्रिमजान लरा उड़ू जग ची मार्केट के हो तो खुदे मला क्रिमान दी नवे जुलाल अश्तक ना सलग हम कवे चले रे कई बा स्तासो दमख टूली मसले हवा हम पयो जल सरा को स्तासो मखतूर वी या तेर सरे दे दागुन दी चापुन दी दस्तर गुलां दी तूरे हलकी दी या दागा शांति नूर डेर मसले वी अवस्तासो मखवर सरा डेर बदरंग अखकारी नुहम उस जान लरवड़ी जुलाल अक्रिम और पेस्वाश चे दमख दगा टूले मसले दरला मुकमल खत्म की और दखाइस पखवन पुएशी पखवन द जुलाल बतासुता पा हर यो जलन स्टोर कॉस्मेटिक स्टोर और मेडिकल स्टोर के डेर पासान मिलावेगी और दनूरु मालूमातु दपारा परी नंबर कालु कई 0311 19 36 633 इन से पर द्रे यो यो यो नहा द्रे श्पग श्पग द्रे द्रे
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है
3: प्यार की एक दुनिया लेकर
4: मोहब्बत समेट कर

哎，来干嘛熊猫把啥口袋的不要看你们先到口袋不要再看了啦啦啦啦ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

सलाम मामू। मामू जाना सिंह है, तबियत सिंह है दे। तासुखे तासु प्रोग्राम सम नाइस्ते। ए मामू जुमा ठूल जिना कुता सलाम। खास सलाम सोनिया इकबाल, अंसा लेला फातमा नूर, नाजिश नूर मायरा, आसमा जेमल नादिया, सुहाना हादिया, इकरा बिंतहाल, ईशान दलीब, जारा लाइबा, आयशा दुआ महक, गुलरंग आसमा, सारा सिद्रा सनम, हानिया मुस्कान साना, कोला बरीरा, मारिया नादिया, मानू तसलाम, आयम फजर खान, डेरा मदना फजर खान खुशहाल उसे चिता सुमते मैसेज प्रोग्राम शोक सराव रहे अस्तासु डेरा मनन मीना वालो तासु तो पारा मुंगरा उड़ी सिफात सिफात ब्यूटी क्रीम सिफात राइस ब्यूटी क्रीम सिफात सिरम सिफात सन ब्लॉक सिफात फेस वॉश सिफात राइस फेस वॉश सिफात विटामिन सी फेस वॉश सिफात ब्लीच सिफात राइस ब्लीच देर खिस्त प्रोडक्ट थे और नन मंगा डर अगस्त थे तो माशाल्लाह डेर तपूसू नकड़ी खालक डेर बेचे ना रे।